मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है, खासकर बुरी चीजों को लेकर, कि आदत पड़ गई है और अब नहीं छूटती। देखिए, चाहे आदत अच्छी हो बुरी हो जैसी भी हो, इतनी बड़ी नहीं होती, लाइफ के लिए इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं होती कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, बस एक मजबूत इरादा, एक मजबूत फैसला जो है वो होना बहुत जरूरी है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस आदत को छोड़ना चाहें। कई बार आदत छोड़ने के लिए, खासकर बुरी आदत या एडिक्शन को छोड़ने के लिए, आप काउंसलर्स की मदद लेते हैं, मेडिसिन की मदद लेते हैं, बट वो भी कुछ वक्त तक ही आपके काम आती है। वजह यही है कि आप अंदर से रेडी नहीं होते, आपका खुद का फैसला नहीं है कि आप उन्हें छोड़ सकते हैं। तो अगर आप ठान लें तो फिर बड़े से बड़ी दीवार आप गिरा सकते हैं, फिर ये तो आदतें हैं। आइए इसी एक प्यारी सी आदत के नाम की आप इट हैपेंस के साथ रोज जुड़ते हैं, मैं आपके लिए प्ले करती हूँ ये अगला ट्रैक। के प्लस टू रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, सताक्षी आपके साथ है।

वेलकम बैक। इस एक और गाने के बाद आप हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रसवानी 107.1 एम पर। कई बार ऐसा होता है कि आप गुस्से में जाने अनजाने लोगों को हर्ट कर देते हैं, लोगों को कुछ कह देते हैं और उसके बाद आप रिग्रेट भी करते हैं कि यार शायद इतना नहीं कहना चाहिए था या इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था और आपने बोल दिया। यू नो व्हाट, कुछ बोलने में या फिर पेड़ से कुछ भी तोड़ने में आपको सिर्फ एक पल लगता है, उससे ज्यादा का वक्त नहीं लगता। जुबान से जो निकल गया वो निकल गया, लेकिन जिसको आपने कहा है कभी कभी उसे मनाने में या फिर जो तोड़ा है, जो खराब किया है उसे बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा तोड़िए भी सोचकर और बोलिए भी सोचकर, राइट। चलिए, ये सीख जो है ये हमेशा याद रखिएगा ताकि जो रिग्रेट आपकी जिंदगी में आता है, जो तकलीफ फिर आपको होती है, उससे आप बच सके। इसी बात पर ही अगला गाना। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 एम, सुनते रहिए मेरे साथ, इट हैपेंस।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

सुबह के ब्रेकफास्ट शो, आपके अपने ब्रेकफास्ट शो में आप है सताक्षी के साथ रेडियो प्रसानी 1701 AM पर। जी हाँ, आप सुन रहे हैं मेरे साथ इट हैपेंस। कई बार हम कहते हैं कि सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है और वक्त आने पर हर काम होता जरूर है, लेकिन मजबूरी ये है हमारी और आपकी कहानी ये है कि सब्र इतनी जल्दी आता नहीं है। पेशेंस छोटा सा शब्द है, लेकिन पेशेंस रखना बहुत बहुत डिफिकल्ट है और बहुत कम लोग इस पेशेंस को रखने में महारत हासिल कर पाते हैं। लेकिन इस सब्र की, इस पेशेंस की खास बात जानते हैं क्या है? इस सब्र की खास बात यह है कि जब ये एक बार आ जाता है ना, तो फिर आपको कुछ भी पाने की तलब नहीं रहती है। फिर धैर्य रखना, पेशेंस रखना बड़ा आसान सा लगने लगता है और लगता है कि यार वक्त पर चीजें होंगी जरूर। आप सब कुछ उस पर छोड़कर और बस अपना काम करते हैं और बाकी चीजें वक्त पर छोड़कर पेशेंस रख लेते हैं। सो यस, ये बात बिल्कुल सही है कि पेशेंस रखना जरूरी है। वैसे भी हड़बड़ी में, जल्दबाजी में आप जो चाहें वो आपको मिलने वाला नहीं है, इसलिए ऑप्शन भी आपके पास नहीं है कुछ। तो कई बारी जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चलती, वो आपको अपने हिसाब से चलाती है और आपको चलना पड़ता है। तो यस, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और चलिए इस अगले ट्रैक के लिए आपको पेशेंस नहीं रखना है। ये प्ले कर रही हूँ आपके लिए, सुनते रहिए इट हैपेंस सताक्षी के साथ।

किसी से फर्क पड़ना जहां बंद हो जाता है, किसी से फर्क पड़ना जहां बंद हो जाता है, जी भर के जीना वहीं से शुरू हो जाता है। वेलकम बैक, रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। इस खूबसूरत गाने के बाद एक बार फिर से आप सताक्षी के साथ हैं, और ज्यादातर परेशानियां हमारी, उलझने हमारी यही हैं कि हमें लोगों की बातों से, लोगों के कहने से, लोगों के हमें देखने से बहुत फर्क पड़ता है, खासकर उनके जिनसे आप प्यार करते हैं या जिनकी आपको परवाह है, और हमेशा आप उनके हिसाब से ही खुद को चलाना चाहते हैं, के हिसाब से ही खुद को ढालना चाहते हैं। उन्हें आपको देखकर फर्क किस तरह का पड़ता है, ये बात जो है ये आपके जहन में बैठ सी जाती है और आप बस उसी हिसाब से चलना चाहते हैं। लेकिन जिस दिन ये फर्क पड़ना बंद हो जाता है, जिस दिन ये फर्क वर्ड जो है वो आपकी डिक्शनरी से निकल जाता है, आपको जिंदगी जीना आ जाता है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को दूसरों के हिसाब से चलाते रहेंगे, तब तक लोग आपको अपने हिसाब से चलाते रहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि खुद को खुद की नजर से देखिए, खुद को खुद के अंदाज में ढालिए और इस फर्क शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस अगले गाने के साथ, इसी बात पर। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी आपके साथ है।

आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इस वक्त आप सताक्षी के साथ एंजॉय कर रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 FM पर। वेलकम बैक। एक ऐसी चीज जिसकी तलाश हर सुबह शुरू होती है और हर रात को जाकर खत्म होती है, वो है सुकून। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सुबह इस सुकून की तलाश में निकलते हैं और शाम को जब लौटते हैं तो उनके साथ साथ ही सुकून आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप बस ढूंढते ही रहते हैं उसको, रोज आप खाली हाथ लौटते हैं और इस सुकून से आप कोसों दूर होते हैं। वजह, ख्वाहिशें, क्योंकि इतनी ख्वाहिशें हैं कि सुकून बेचारा कहीं छुप सा जाता है। लेकिन सवाल फिर से वही कि सुकून आखिर ढूंढा कैसे जा रही है, मिले कैसे? देखिए, सुकून को जब तक आप अपनी ख्वाहिशों में या दूसरों में ढूंढेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ उलझने मिलेंगी। सही मायनों में सुकून खुद में है, आपके पास है, उसे कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं। बस प्रॉब्लम इतनी है कि भगवान की तरह हम इसे भी बाहर ढूंढ रहे हैं, अपने अंदर नहीं। तो खुद में खोजिए, आपको सुकून जरूर मिलेगा। आइए इसी बात पर हमारे सुकून के नाम सुनते हैं ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।

तो दोस्तों ये था आज इट हैपेंस पर मेरा आपके साथ एक और साथ। आज हमने फिर से आज की जिंदगी पर कुछ बातें, कई जिंदगी के सवालों पर कुछ बातें, और आई रियली विश कि आपको भी आज का ये सफर एक बार फिर से अच्छा लगा होगा। आज की सुबह की ये जर्नी जो है ये बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए कल सुबह इसी जर्नी पर आपके अपने ब्रेकफास्ट शो में फिर से मिलेंगे आपसे। आज के सफर से इजाजत दीजिए और इस वादे के साथ कि कल फिर लौटेंगे। लेते हैं विदा। हैव अ ग्रेट डे एंड ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग।

हां जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 FM ते जी आप जी संदेश औलक दे नाल तुसीं बने होए हो। देखो बॉलीवुड दी चकाचौंध भरी दुनिया विच शोहरत कमाउण दे लई सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि एक दमदार नाम दा होना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि अक्षय कुमार कैटरीना कैफ सैफ अली खान वर्गे इंडियन सिनेमा दे कई वड्डे सितारियां ने परदे ते कदम रखण तो पहला अपना असली नाम बदल दिता सी। इन्हां नूं लग्या कि फिल्म इंडस्ट्री दे मिजाज अते दशकां नाल जुड़ाव दे हिसाब नाल उन्हां दे जन्म दे नाम उन्ने असरदार नहीं है, इसलिए उन्होंने खुद नवा स्क्रीन नेम दिता जिस नाल अगे चल के उन्होंने घर घर विच पहचान बनाई है कि बिल्कुल सही। भारतीय सिनेमा विच रजनीकांत अक्षय कुमार कैटरीना कैफ वर्गे कई अजिहे नाम हैगे ने जो कामयाबी की सब तो वड्डी गारंटी हैगे ने। ए बिल्कुल सच गल हैगी है जी। इन्होंने नाम बदले है अच वा नाम कमा रहे हैं कि असली नाम की है शायद थानू नहीं पता होना पर कोई गल नहीं टेंशन नहीं लैनी। मैं दस दी एक एक करके पर पहला सुनो एक गीत।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए। ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए। इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

गोल भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो briswani.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रीज सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रीज सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। ब्रीज सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और

0: जी आयन जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चाहते वाले रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101.9 ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला जेड़ा नाम है वह है जो बहुत ही खूबसूरत जी अदाकारा दा 90s दी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत अदाकारा है ते आज भी एवरग्रीन है उन्हीं खूबसूरती बरकरार है। नाम है जी तपू। जी हां, अपनी बेहतरीन अदाकारी दे लिए मशहूर एक्ट्रेस तपू दा नाम पहला कुछ और सी, थोड़ा औखा सी, पर मैं तुहानू दस दिंदी हां नाम सीगा जी तबसुम फातिमा हाशमी। जद उन्होंने फिल्मों विच एंट्री ली ना तो अपने इस वड्डे नाम नू छोटा करके तबू रख लिया। उन्होंने लग्या कि वड्डे पर्दे दे लिहाज नाल ये नाम काफी क्रिस्प छोटा ते एक मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस वाला रहेगा। नाम बदलन दा एक फैसला फिल्म मेकर्स दे लई मार्केटिंग दे हिसाब नाल काफी सौखा रहा ते इस नाल उन्होंने यूनिक पहचान भी बनी रही।
1: ਮੁੰਡਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: तुहाड़े इलाके विच मौजूद हन. जे तुहानू लगदा है कि तुहाड़े घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, ता इस दी सूचना दियो. असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे. होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो. ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है. ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन.

जी जी आयनु जी पर बेड़ा हो चुके हैं तो टाटा बाय बाय कहना जी आया फिर भी कह लिया क्योंकि एक नाम बहुत ही इंपोर्टेंट सी जिस बारे थानू दसना बेहद जरूरी सी। मैं सोचा जान तो पहला उन्होंने बारे थानू दस देनी है तो नाम है चीफ रेखा जी हाँ बॉलीवुड की आवर क्वीन ब्यूटी रेखा ता असल नाम रेखा नहीं सी असल नाम सी जी भानु रेखा गणेशन। उन्होंने जब उन्होंने सिनेमा की दुनिया विच कदम रखिया ना तो उन्होंने अपना नाम छोटा करके सिर्फ रेखा रखना पिया। ए नाम ना सिर्फ बेहद सिंपल अते एलीगेंट सी बल्कि आम दर्शकों के लिए इस नूं याद रखना भी काफी सौखा सी। अगे चल के सिर्फ एक नाम वाली अनोखी पहचान भारतीय सिनेमा के इतिहास विच सब तो आईकोनिक शख्सियतां विचों एक बार की हैगी है। इस गल दे नाल तां मेरे ख्याल सारे ही सहमत ने। बाकी थानू के कौन एक्टर है जिसका असली नाम ज्यादा वधिया लग्या हैगा चेंज किते हुए नालों वो तुसी सानू जरूर दस्यो। रेडियो ब्रिसोनी 101.1 साडा फेसबुक पेज है जिसे brisoni@brisoni.com साडी ईमेल आईडी है जरिए जेड़ा भी अपनाउणा अपनाओ पर साडा गल्लबात जरूर करते रहा करो है ना। तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो ते मैं हुणे वापस आउनी आ ना ना ना ना कल वापस आउनी आ करन दे लई ठेर सारियां गल्लां ते चलो फिर जाण वेले इक्को गल कहणी है कि रखो अपना ख्याल सत श्री अकाल।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: चलो चलो चलो, लेट हो गए। ले भाई चाबी।
1: सर ऑन स्टेज 5 मिनट्स।
0: ओके तुम्हारी मैं जाऊं। लगता रूम में रह गई।

0: this is Amit Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिटानी.
2: Hi, this is Deepika Padukone और आप सुन रहे हैं रेडियो. To everyone, to Radio Brisbane. This is Alia.
3: मैं हूँ कृति कुमार और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिटानी.
4: You're tuning into Bani. This is Shahrukh Khan.
5: Hi, this is Ajay Devgn और आप सुन रहे हैं रेडियो.
6: Some number 38, what is 21700, master number of Vedicton, a heritage queen plate, first issue 92 of Queen's history, old covenant, own outright, grant ready. The buyer wants that the number you are in, the sense of Gua, plate sales, inquire at cubesales.com.au, it's just a number, it's a state.

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

सोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ, क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
5: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
6: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
7: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
4: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असीं तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। 2032 ओलंपिक से पहले ब्रिस्बेन के कमर्शियल प्रॉपर्टी मार्केट में आया भारी उछाल, ब्रिस्बेन के लिए एक बहुत ही शानदार खबर है। साल 2032 में होने वाले ब्रिस्बेन ओलंपिक से ठीक पहले यहां के कमर्शियल प्रॉपर्टी मार्केट ने रफ्तार पकड़ ली है। वहीं ब्रिस्बेन में खेले गए ADF रग्बी चैंपियनशिप में सेना का दबदबा। ब्रिस्बेन के एश ग्रोव में स्थित GPS रग्बी क्लब में ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स यानी कि ADF रग्बी चैंपियनशिप का शानदार आयोजन हुआ। इसमें एयरफोर्स और नेवी की महिला टीमों ने हाथ मिलाकर आर्मी की टीम का मुकाबला किया। वहीं नेशनल चैंपियनशिप में चमके ब्रिस्बेन के स्विमर्स। मास्टर्स स्विमिंग ऑस्ट्रेलिया नेशनल चैंपियनशिप में ब्रिस्बेन और आसपास के डिफेंस मेंबर्स और लोकल स्विमर्स ने पानी में अपनी रफ्तार का जलवा बिखेरा। वहीं ASX का सिंपली से बाहर होना चर्चा में फाइनेंस की दुनिया से ब्रिस्बेन और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ी खबर है। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एक्सचेंज ने सिंपली में अपनी 49% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। इसी के साथ ब्रिस्बेन में कड़कड़ाती ठंड की शुरुआत, मौसम विभाग का अलर्ट। मौसम के मिजाज की बात करें तो ब्रिस्बेन में ठंड ने पूरी तरह दस्तक दे दी है। सुबह और रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं वीकेंड के लिए ब्रिस्बेन के साउथ बैंक पर खास फूड फेस्टिवल की तैयारियां शुरू। और चलते चलते एक मजेदार खबर है ये, आने वाले वीकेंड को शानदार बनाने के लिए ब्रिस्बेन के मशहूर साउथ

भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बीकानेर में एक बड़े सुरक्षा प्लान का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि अगले 6 महीने के भीतर देश की सीमाओं पर एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम पूरी तरह से तैनात कर दिए जाएंगे। वहीं कोल इंडिया में सरकार बेचेगी अपनी हिस्सेदारी, बिजनेस की दुनिया से बड़ी खबर है। भारत सरकार ने सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड में अपनी 2% हिस्सेदारी बेचने का बड़ा फैसला किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में धूल और प्रदूषण के खिलाफ नया एक्शन प्लान। दिल्ली में हवा की क्वालिटी सुधारने और उड़ती धूल से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है। सरकार ने 5 बड़े रास्तों कॉरिडोर्स को नए सिरे से डेवलप करने का काम शुरू किया है। वहीं दिल्ली को मिला हरियाणा से एक्स्ट्रा पानी, संकट से थोड़ी राहत। दिल्ली में पानी की बढ़ती किल्लत के बीच एक राहत भरी खबर है। हरियाणा सरकार ने दिल्ली के लिए इमरजेंसी वाटर रिलीज कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भारी कमी देखी जा रही थी। वहीं नीट पेपर लीक केस में नया मोड़, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। इस केस में गिरफ्तार किए गए कोचिंग सेंटर के फाउंडर के नाबालिग बेटे को पुलिस अपना स्टार विटनेस यानी मुख्य गवाह बना सकती है। वहीं यूपी में तकनीकी खराबी के कारण एसएससी एग्जाम कैंसिल, उत्तर प्रदेश के कुछ परीक्षा केंद्रों से निराशा करने वाली खबर है। यहां चल रहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम को कुछ सेंटर्स पर अचानक टेक्निकल फॉल्ट यानी कंप्यूटर और सर्वर में आई खराबी के कारण कैंसिल करना पड़ा है। ऐसे के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले रूस ने बनाया खतरनाक इबोला वायरस के नए स्ट्रेन का टीका। मेडिकल साइंस की दुनिया से एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर आई है। रूस के वैज्ञानिकों ने कांगो और युगांडा में फैल रहे इबोला के एक नए और खतरनाक स्ट्रेन के खिलाफ एक नई वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है। वहीं अफ्रीका से आने वाले यात्रियों के लिए कनाडा ने लागू किए सख्त नियम। इसी इबोला संकट को देखते हुए कनाडा सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। कनाडा ने फैसला लिया है कि इबोला प्रभावित देशों से आने वाले सभी यात्रियों को देश में एंट्री करते ही 21 दिन के लिए सख्त आइसोलेशन में रहना होगा। वहीं बायजूस के फाउंडर को सिंगापुर में 6 महीने की जेल की सजा। एजुकेशन टेक कंपनी बायजूस के फाउंडर बायूज रविंद्रन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सिंगापुर की एक अदालत ने एसेट डिस्क्लोजर ऑर्डर्स यानी अपनी संपत्तियों की सही जानकारी ना देने और अदालती आदेशों की अनदेखी करने के मामले में उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। वहीं अमेरिका में केमिकल टैंक फटने से बड़ा हादसा, एक की मौत। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य से एक दुखद दुर्घटना की खबर है। वहां के लॉगव्यू में स्थित एक पैकेजिंग मिल में एक बड़ा केमिकल टैंक अचानक फट गया। इसी के साथ 80वें जन्मदिन से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बताया सुपर फिट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले कुछ दिनों में अपना 80th बर्थडे मनाने वाले हैं। इससे ठीक पहले उन्होंने अपनी ताजा मेडिकल रिपोर्ट शेयर करते हुए दावा किया कि वो परफेक्ट हेल्थ में हैं। वहीं नेटफ्लिक्स की मशहूर सीरीज के पीछे की मर्डर मिस्ट्री सुलझी, आरोपी को सजाए मौत। नेटफ्लिक्स की ब्लॉकबस्टर सीरीज थ्री बॉडी प्रॉब्लम को बनाने वाले चाइनीज गेमिंग बिलियनेयर की हत्या के मामले में चीन की अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले फ्रांस ओपन में भारतीय अमेरिकी खिलाड़ी निशेष वसावरेडी ने रचा इतिहास। पेरिस में चल रहे फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट से एक ऐतिहासिक खबर है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़कर प्रोफेशनल टेनिस में आए भारतीय मूल के खिलाड़ी निशेष वसावरेडी ने दुनिया के टॉप 10 खिलाड़ी टेलर फिट्स को हराकर तहलका मचा दिया है। वहीं आईपीएल 2026 रजत पाटीदार के तूफान में उड़ा गुजरात आरसीबी फाइनल में। आईसीसी और आईपीएल के दीवानों के लिए कल की रात आरसीबी के नाम रही। रजत पाटीदार ने सिर्फ 33 गेंदों में नाबाद 93 रनों की आतिशी पारी खेलकर गुजरात टाइटंस के बॉलिंग अटैक को तहस नहस कर दिया। वहीं आज आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की महाभिड़ंत होने वाली है।
इसी के साथ चेस किंग्स मैग्नस कार्लसन ने खुद के खेल पर कसा अजीब तंज। शतरंज की दुनिया के बेताज बादशाह मैग्नस कार्लसन अपने एक अजीब बयान को लेकर चर्चा में हैं। एक मैच

0: दौरान एक आसान चाल चूकने और चेकमेट करने के बजाय क्वींस को करने के लिए उन्होंने अपने ऊपर तंज कसा है। इसी के साथ नॉर्वे चेस 2026 में भारत के प्रज्ञा नंदा और गुकेश की धमाकेदार शुरुआत। ओस्लो में शुरू हुए नॉर्वे चेस 2026 टूर्नामेंट में भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञा नंदा और डी गुकेश ने अपने पहले ही दौर के मैचों में शानदार जीत की दर्ज की। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: Beyond what you see, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉक 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉक सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉक 2026 आपका इंतजार रहेगा।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

सोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो briswani.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ग्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ग्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तू भी ना आती।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना।
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading
1: Containers for Change
0: के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिनकॉइन कहते हैं। अपने बिनकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसोनी एम ते जी आर चे संदेश अलग दिन बने हुए। अगला नाम जिहड़ा आंदा हैगा ओह है जी बहुत ही ज्यादा सोहनी मूवी है ओह ते जदो तुसी उसका एंड देखोगे ना तो तुसी कहोगे हो की गया हैगा तुसी खुद सोची पै जाओगे। ते फिल्म का नाम है जी सैक्शन 375। अक्षय खन्ना ते रिचा चड्ढा दी फिल्म हैगी है ते ए फिल्म इस जोनर दी सब तो अंडर रेटेड ते दिमाग घुमा देने वाली फिल्मों विचों एक है। कहानी इंडियन पीनल कोड दे सैक्शन 375 यानी कि रेप दे गिर्द घूमती है। कोर्ट रूम दे अंदर दो बहुत काबिल वकील एक आरोपी अक्षय खन्ना एक आरोपी का केस लड़ रहा है। अक्षय खन्ना दूसरा पीड़िता का केस लड़ रही है यानी कि रिचा चड्ढा। फिल्म बहुत ध्यान दिखाती है कि किवें कानून और न्याय कदे कदे दो वक् वक् चीजा बना सकते ने। स्क्रीन पे इन्ना टाइट है ना कि दर्शकों नूं अपनी अपनी सीट तो ना एक मिनट लई भी हिलण नहीं दिंदा। दर्शकों नूं अखीर मिनट तक पता ही नहीं चलता कि असली गुनहगार कौन है।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: न तेरे वर्गा आशिक वेख्या न तेरे वर्गी आशिकी।
3: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid ul Azha, May 27th.
4: एक जंगल में लकड़हारा अपनी बीवी के साथ रहता था और उनके पास थी सोने का अंडा देने वाली एक नायाब मुर्गी।
5: इस ईद बिग स्क्रीन पर आग लगाने आ रही है पाकिस्तान की ब्लॉकबस्टर जोड़ी फहद मुस्तफा एंड माहिरा खान। देखिए आग लगे बस्ती में।
6: चोरी डाका क्या काफी नहीं है ये सब कुछ?
7: ये सब करके भी हाथ में फूटी कौड़ी नहीं
6: तो भेज दे, मुझे भेज दे।
7: तेरे लिए तो कोई खुला ना दे।
5: आग लगे बस्ती में ऑन 20th मार्च इन थिएटर्स नियर यू।
4: अब आग लगेगी बस्ती में।
8: Ha ha!

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101.1 एम चार्चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगली फिल्म हैगी है जी अवार्ड विनिंग फिल्म हैगी है, बहुत ज्यादा शानदार फिल्म हैगी है, जिसन देख के थोड़िया अखा हंजू भी जरूर निकलने, क्योंकि वह हैगी इस तरह की फिल्म है। फिल्म का नाम है जी जय भीम, बहुत ज्यादा हिट हुई है, बहुत ज्यादा पसंद की गई है, कहानी बहुत ज्यादा वधिया हैगी है। साउथ के सुपरस्टार सूर्या की फिल्म है, तमिल फिल्म है जय भीम, जो हिंदी भी अवेलेबल हैगी है। एक सच्ची घटना से आधारित है जो थोड़िया अखा हंजू जो मैं पहला कहना कि लिया के हटूगी। फिल्म में एक गरीब आदिवासी आदमी से पुलिस चोरी का झूठा आरोप लगाती है, कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है। इस तो बाद वकील चंद्रू यानी कि सूर्या बिना कोई फीस लए हैबियस कॉर्पस पिटीशन के जरिए कोर्ट विच केस लड़ता है। जिस तरह नाल कोर्टरूम के अंदर पुलिस की क्रूरता से सरकारी मशीनरी दे झूठ का पर्दाफाश हुंदा है ना, वो इस फिल्म नू एक कल्ट सिनेमैटिक विरासत बनाता है।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धन राशि कमाएं. आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है. इसे हम बिन कॉइन कहते हैं. अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें. आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है. बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में. अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही.
3: आर यू रेडी टू स्टॉप रेंटिंग एंड थिंकिंग अबाउट ओनिंग वन, और मे बी एन इन्वेस्टर लुकिंग टू इन्वेस्ट? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: भैया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार, सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए। ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, a professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

ना बदला मैं, ना बदला।

बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला बदला

वाह कितनी खूबसूरत लग रही है।

भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

हर समस्या के सिर्फ तीन समाधान हैं। हर समस्या के सिर्फ तीन समाधान हैं। सब्र करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। सब्र करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। श्रीमद् भगवद गीता की ये बात जिंदगी के हर मोड़ पर, हर परेशानी में हमारे लिए बहुत जरूरी और कारगर है। अगर हम इसे याद रखें तो शायद हम जिंदगी के बहुत सारे डिसीजंस बड़े ही आराम से ले सकते हैं। तो चलिए आज एक बार फिर से जिंदगी के ऐसे ही पन्नों को समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। जीवन आधार में उस परमपिता परमेश्वर, उस ईश्वर, उस वाहेगुरु अल्लाह और जीसस क्राइस्ट के साथ जुड़कर उनकी कही कई बातों पर जरा ध्यान देके गौर करके अपने जीवन को एक आधार देते हैं, जीवन को सफल बनाते हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं सताक्षी आपके साथ जीवन आधार में और लेकर आई हूं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर यही सफर। आज एक नई सुबह, एक प्यारी सी खूबसूरत सी जिंदगी से भरी सुबह आपके लिए फिर से। आइए इसे एक अगले गाने के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए मेरे साथ जीवन आधार।

कस्तूरी कुंडल बसए मृग ढूंढे वन माही, कस्तूरी कुंडल बसए मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटघट हरि हैं दुनिया देखे नाही, ऐसे घटघट हरि हैं दुनिया देखे नाही। रेडियो प्रसानी 1701 एम पर आप सुन रहे हैं श्रोताओं जीवन आधार सताक्षी के साथ। हम उस शक्ति को जो इस दुनिया को चला रही है, जिसे हमारी खुशी हमारे गम हर चीज का ख्याल है, या जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में कोई भी सिचुएशन आती है, उसको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते हैं। मंदिर में, चर्च में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, हर जगह जाके हम उस शक्ति को खोजने की, उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि हमें उसकी कृपा मिल सके, हम उसे प्राप्त कर सकें। लेकिन देखा जाए तो आपके अंदर ही तो वो शक्ति है, आपके अंदर ही वो राम है जिसे आप ढूंढ रहे हैं, आपके अंदर ही वो अल्लाह है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। अपने मन के अंदर झांकिए। मन के अंदर कैसे झांकेंगे? ऐसे नहीं झांकेंगे, मन के अंदर तब झांकेंगे जब अपने मन को समझ पाएंगे। एक बार मन को समझ गए तो ईश्वर को कहीं भी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमेशा आपको हर जगह दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आइए इसी बात पर एक और गीत के साथ बढ़ते हैं आगे, हमारे जीवन आधार के सफर में सुनते रहिए रेडियो ब्रह्मवाणी।

बीजेपी 1701 पर जीवन का आधार, जीवन आधार श्रोताओं आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ। आज अपने जीवन को आधार देने की, उसे समझने की, जानने की हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। आइए इस अगले गीत के साथ बढ़ते हैं हमारे सफर में आगे।

दोस्तों हम मनुष्य भी कितने अजीब हैं ना, मतलब दुख में तो ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन जब सुख के दिन होते हैं, जब सब कुछ जिंदगी में अच्छा चल रहा होता है, बेहतरीन चल रहा होता है, तो अक्सर रातें हमारी सोकर बीतती हैं, दिन खाकर गुजर जाते हैं। हर एक चीज की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, हम दुनिया की सबसे कीमती या बेशकीमती चीजें पाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे घर में सारी चीजें हमारे साथ हों, हमारे पास ऐसा कुछ भी ना हो सुख सुविधा से जुड़ा जो हमारे पास ना हो, है ना। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा कीमती चीज है, उसे हम अक्सर भूल जाते हैं। सांसारिक कीमती चीजों को पाने के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि उस ईश्वर से बढ़कर, उस परमपिता परमेश्वर, उस अल्लाह, उस वाहेगुरु से बढ़कर भला हमारे जीवन में कीमती और क्या हो सकता है। आपको जो मिलता है वो भी उसकी मर्जी, और जो नहीं मिला वो भी उसी की मर्जी। इसी बात पर ही अगला गाना सुनिए। इसे और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी, आप हैं सताक्षी के साथ।

आधार आप सुन रहे हैं हर रोज की तरह आज एक बार फिर से रेडियो पुलिसवानी 1701 AM पर, और इस आधार में आपका साथ निभा रही है सताक्षी। आज ईश्वर को, उस शक्ति को जो इस संसार को चलाती है, उसे पहचानने की, जानने की एक छोटी सी कोशिश, क्योंकि हम उसे पूरा कभी नहीं जान सकते, लेकिन जितना हम समझ पाए हैं उस ईश्वर को, उस परमपिता को, उसको जानने की एक छोटी सी कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं हमारे जीवन आराधना में। हमें यूं ही सुनते रहिए और आइए आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ।

पाकिस्तानी 1701 एम्पायर जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ। हम अक्सर कहते हैं कि मन हमेशा सही होता है, मन हमेशा सच बोलता है और इसीलिए जो मन कहे वही करना चाहिए। लेकिन यही मन है दोस्तों जो लालची है, जो सब कुछ खुद के लिए पाना चाहता है, सब कुछ खुद के लिए करना चाहता है। यही मन है जो चंचल है और चोर भी है, हर तरफ भागता है, आज यहाँ तो कल अपने फ्यूचर की न जाने कितने ज्यादा दिनों के फ्यूचर की प्लानिंग कर डालता है। मन आपका आज में रहता ही कहाँ है, वो तो कहीं भी कभी भी पहुंच सकता है। हाँ, पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, लेकिन आपका मन पहुंच जाता है। लेकिन इस मन के हिसाब से मत चलिए। माना कि ये मन हर जगह पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी इस मन के हिसाब से मत चलिए, क्योंकि ये मन ही है जो हर पल बदलता है, बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। कहते हैं ना, अभी आप कुछ सोच रहे थे, अब आप कुछ और बात कर रहे हैं। हमारा मन हमेशा अपने रास्ते खुद बना लेता है। मन के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से मन को चलाइए, क्योंकि अगर एक बार आपका मन आपको कंट्रोल करने लगा तो परेशानी बहुत बहुत हो जाएगी। इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी और रहिए।

आधार आप सुन रहे हैं हर रोज की तरह आज एक बार फिर से रेडियो प्रसानी 1701 AM पर, और इस आधार में आपका साथ निभा रही है सताक्षी। आज ईश्वर को, उस शक्ति को जो इस संसार को चलाती है, उसे पहचानने की, जानने की एक छोटी सी कोशिश, क्योंकि हम उसे पूरा कभी नहीं जान सकते, लेकिन जितना हम समझ पाए हैं उस ईश्वर को, उस परमपिता को, इसको जानने की एक छोटी सी कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं हमारे जीवन आराधना में। हमें यूं ही सुनते रहिए और आइए आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ।

वाणी 1701 एम पर आप सुन रहे हैं जीवन आधार सताक्षी के साथ। अक्सर हम सब अपनी जिंदगी बहुत बड़ी चाहते हैं ना, हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ बहुत बड़ी हो ताकि हम जिंदगी के हर एक पल का मजा ले सकें और ज्यादा दिन जी सकें, ज्यादा दिन अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकें। फिर तो पता नहीं ये जिंदगी कब मिलेगी, मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, लेकिन ज्यादा जियेंगे तो ज्यादा इस जिंदगी को संवार पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि जिंदगी एक दिन की है, चार दिन की है या फिर सालों की है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसे जीते कितना है। बहुत सारे लोग तो बुजुर्ग भी हो जाते हैं लेकिन जिंदगी उन्होंने जी ही नहीं होती है। कम से कम वैसे मत बनिए। जिंदगी चाहे एक दिन की ही क्यों ना हो, लेकिन इसे इस अंदाज में गुजारिए कि ये दुनिया का एक सबसे खूबसूरत और प्यारा पल रहे और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएं, आप अपनी जिंदगी का हर पल मुस्कुराते हुए बिता पाएं और औरों को मोटिवेशन दे पाएं। इसी बात पर आगे बढ़ेंगे एक और गाने के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रिस्मानी, आपके साथ है सताक्षी।

दोस्तों ये था आज एक बार फिर से जीवन आधार पर मेरा आपके साथ एक और साथ। कल फिर से एक ऐसे ही साथ पर हम और आप साथ साथ चलेंगे। कल हमें सुनना मत भूलिएगा और आज के सफर से आप लूंगी।

गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे श्रोताओ, नमस्ते, अदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? एंड आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो लो फिर फ्राइडे आ ही गया है, मतलब वीकेंड ऑफिशियली दूर से हाथ हिला रहा है कि आई एम कमिंग। जी हाँ, यानी कि आपको बताना चाहती हूँ कि दोस्तों, यानी इस वीकेंड का सबको कितना इंतजार होता है ना, कि छुट्टी होगी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एंजॉय करेंगे, बाहर जाएंगे, मूवी देखेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। जी हाँ, तो दोस्तों हाजिर हो चुकी है आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जानी, और अगले कुछ मिनट्स में हम बात करेंगे फिल्मी दुनिया की, कुछ क्रेजी फैक्ट्स एंड लेटेस्ट एंटरटेनमेंट बज़, और थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी मस्ती। जी हाँ, क्योंकि ये होना बहुत जरूरी है। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं रेडियो ब्रिस्वानी में प्रोग्राम चांदनी का सफर विद योर फ्रेंड आरजे चांदनी जैन। तो आइए सुनते हैं ये गीत ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

हाँ जी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। तो सबसे पहले आइए कुछ फिल्मी तड़के के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आज का पहला फिल्मी फैक्ट सुन के आप भी कहोगे व्हाट? जी हाँ, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। दोस्तों, शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी किंग को इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव एक्शन फिल्म में काउंट किया जा रहा है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसका बजट जो है अराउंड 350 करोड़ जो है वो बताया जा रहा है, और मूवी जो है क्रिसमस 2026 पे रिलीज होगी। और अब शाहरुख खान का जो एक्शन मोड है, वो कहते हैं ना कि शाहरुख खान अब एक्शन मोड में आ गए हैं, और जो फैंस है वो क्रेजी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। जी हाँ, तो बस देरी किस बात की है, थोड़ा सा इंतजार और कीजिए, क्योंकि शाहरुख खान आने वाले हैं एक्शन मोड में, तो उनके फैंस जो है काफी क्रेजी होंगे, है ना। तो आइए इसी के साथ हम सुनते हैं ये ब्यूटीफुल सा सॉन्ग ऑन योर रेडियो ब्रिस्वानी।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी और अब बात करते हैं कुछ अपडेट्स यानी कि न्यूज अपडेट्स की। ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल वर्ल्ड से एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। दोस्तों, फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया को फीफा प्रेसिडेंट जानी इन्फेंटिनो ने स्पेशल सरप्राइज वीडियो मैसेज भेजे हैं, जिसमें कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल की प्रोग्रेस की तारीफ की है। मतलब फुटबॉल फीवर ऑस्ट्रेलिया में और स्ट्रांग होता जा रहा है। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

इसी के साथ दोस्तों बॉलीवुड से फ्रेश अपडेट है। राजकुमार रॉय ने ऑफिशियली सौरव गांगुली बायोपिक की शूटिंग जो है कोलकाता के ईडन गार्डन्स में स्टार्ट कर दी है। यानी क्रिकेट लवर्स और मूवी लवर्स दोनों एक्साइटेड है क्योंकि दादा की स्टोरी बिग स्क्रीन पे देखना काफी इमोशनल होने वाला है, तो आप भी जरूर देखिएगा। और आइए इसी के साथ सुनते हैं ये गीत।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी म्यूजिक लवर्स के लिए एक अपडेट। ऑस्ट्रेलियन म्यूजिक लेजेंड जॉन फरनाम के ऑनर में एक मेगा ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट जो है वो अनाउंस हुआ है, जिसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है परफॉर्म करेंगे। यानी दोस्तों ओल्ड क्लासिक्स का मैजिक फिर से स्टेज पर लौटने वाला है। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं ये गीत रेडियो ब्रिस्वानी में।

वेलकम बैक है जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रसवानी। तो दोस्तों, अगर वीकेंड पे कुछ स्पेशल देखने का प्लान बना रहे हैं ना, तो मैं यानी आपकी दोस्त आरजे चांदनी जैन कुछ आप सभी से स्पेशल शेयर करने वाली है। तो दोस्तों, आपने सीधा ओटीटी पे जाना है और ओटीटी पे काफी नए कंटेंट जो है वो आ रहे हैं। जी हाँ, इस वीक रिलीजेस में कोर्ट रूम कॉमेडी, साईफाई और स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री तक सब कुछ है। स्पेशली जॉली LLB 3, जी हाँ, इसका काफी बस चल रहा है। और एक इमोशनल स्पोर्ट्स ड्रामा भी रिलीज हो रहा है जिसका नाम है कृष्णा और चिट्ठी। जी हाँ, जिसने क्रिकेट और स्पिरिचुअलिटी का जो मिक्स है ना वो दिखाया जाएगा। तो आप जरूर देखें और अपने वीकेंड को बहुत स्पेशल बनाएं। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं ये ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रसवानी।

हाँ जी, तो फ्रेंड्स ये था आज का फ्राइडे फन शो। स्माइल करते रहिए, हाइड्रेट रहिए और वीकेंड को फुली एंजॉय कीजिए। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चानी, मिलूंगी नेक्स्ट सेगमेंट में विद और भी इंटरेस्टिंग बातें। तब तक के लिए म्यूजिक लाउड रखो और टेंशन को लो रखो और मुझे फीडबैक देना ना भूले कि कैसा लगा आप सभी को आज का कार्यक्रम। तो मुझे दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो ब्रसवानी।

सर्वे साक्षी आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका में बेसबॉल बैट से हमला करने के आरोप में भारतीय नागरिक गिरफ्तार, अवैध तरीके से पहुंचा यूएसए। अमेरिका में एक भारतीय नागरिक को बेसबॉल बैट से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार आरोपी गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल हुआ था। इस घटना के बाद अमेरिकी प्रशासन ने एक बार फिर सेंचुरी पॉलिटिक्स पर सवाल उठाए हैं और स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर नाराजगी जताई है। अमेरिका ईरान तनाव और रूस यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच उत्तर कोरिया ने AI गाइडेड मिसाइल की टेस्टिंग। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए आधुनिक युग तकनीक से लैस मिसाइलों और रॉकेटों का बड़ा परीक्षण किया है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उनकी निगरानी में टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों, लंबी दूरी की आर्टिलरी रॉकेटों और AI गाइडेड सटीक क्रूज मिसाइलों का संयुक्त परीक्षण किया गया। 30 साल से पुलिस को चकमा दे रही जर्मनी की मोस्ट वांटेड महिला को 13 साल की सजा। करीब 30 वर्षों तक कानून की आंखों में धूल झोंककर छद्म नाम से सामान्य जीवन जीने वाली जर्मनी की मोस्ट वांटेड महिला डेनियला क्लेटे को आखिरकार सजा मिल गई है। कोर्ट ने इसे कई सशस्त्र डकैतियों और जबरन वसूली के मामले में 13 साल की जेल की सजा सुनाई है। दरअसल करीब 3 दशकों तक पुलिस को चकमा देकर बर्लिन में क्लाउड इवोन नाम की झूठी पहचान के साथ बेहद सामान्य दोहरी जिंदगी जी रही क्लेट को डकैती, जबरन वसूली और अवैध हथियार रखने का दोषी पाया गया। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। भारत ने बदली अपनी रणनीति, दुश्मनों से निपटने के लिए मास्टर प्लान तैयार। चीन और पाकिस्तान से बनी दोहरी चुनौती को देखते हुए भारत अपनी सैन्य रणनीति और परंपरागत युद्ध क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसी देशों के साथ लंबे समय से जारी तनाव और सीमा विवादों ने भारत को बड़े स्तर के सैन्य अभियानों के लिए तैयारी बढ़ाने को मजबूर किया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस पर 2 भारतीय मरणोपरांत किए जाएंगे सम्मानित। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस के अवसर पर 2 भारतीय शांति रक्षकों को मरणोपरांत उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन में सेवारत लॉस हवलदार हरभजन सिंह और दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात नायाब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को कर्तव्य की राह में उनके बलिदान के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा मरणोपरांत प्रतिष्ठित डैग पदक से सम्मानित किया जाएगा। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नीलम का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, 4 मिनट हो गए हैं 7 बजकर और हमारे साथ आप जुड़ गए हैं सुबह का सफर में। अभी से लेकर 9 बजे तक हमारा ये साथ रहेगा और जुड़े हैं आप हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। कहना चाहेंगे वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आज फ्राइडे है 29th of May। तो बताइए दोस्तों क्या हाल है। फ्राइडे है आज, हैप्पी हैप्पी डेज। जो बारिश इतनी दिनों से हो रही थी तो शायद अभी थोड़ा क्लियर है। वैसे थोड़ी देर में फोकास्ट आपको बताएंगे। चलिए आगाज करते हैं आज की सुबह।

आज भी गस्ट बताया गया है 33 किलोमीटर्स एन आवर। मेलबर्न के लिए 12 डिग्रीज अभी है, क्लाउडी डे, टॉप्स रहेंगे 15 और विंड गस्ट 11 किलोमीटर एन आवर बताया गया है। कैनबरा के लिए 10 डिग्रीज अभी है, सनी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 17। सिडनी के लिए बताया गया है रेनी डे, टॉप्स रहेंगे 20 और विंड गस्ट 49 किलोमीटर एन आवर बताया गया है। गोल्ड कोस्ट के लिए 16 डिग्रीज अभी है और सनी कंडीशंस एक्सपेक्टेड। और सनशाइन कोस्ट के लिए बताया गया है 16 डिग्रीज अभी है, टॉप्स रहेंगे 22, विंड गस्ट बताया गया है 42 किलोमीटर एन आवर। तो आज थोड़ा बारिश 45% चांस बताया गया है ब्रिस्बेन के लिए। देखते हैं, अभी तो मौसम साफ है लेकिन थोड़ा लग रहा है थोड़ा क्लाउडी, लेट्स सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन, आपकी अपनी पहचान, सुबह के सफर में शामिल है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, स्वागत है आपका।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: वैसे सुबह का सफर में आगे बढ़ते हैं और ट्रैफिक अपडेट आपको बताते हैं. नजी बीच गेटवे मोटरवे नजी बीच यहां पर मल्टी व्हीकल क्रैश हुआ था, बट दैट्स नाउ बीन क्लियर्ड. विनम रोड टिंगोपा यहां पर स्टेशनरी व्हीकल हजार्ड है, वन लाइन ब्लॉक्ड ईस्ट बाउंड टुवर्ड्स टिंगोपा. और रास्ते पर है आप, अपना बेहद ख्याल रखिएगा. आगे बढ़ते हैं.

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में। और जो कि फ्राइडे है आज, तो शायद घर पर रहने वाले हैं आप, या घर से काम कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी वर्क चल दिए हैं, या फिर रास्ते पर है, सफर कर रहे हैं, बच्चों का भी स्कूल है, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। फ्राइडे रहता है, सभी लोग रश में रहते हैं, तो ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, स्पेशली अगर आप रास्ते पर हैं। और वेदर भी वेट रहा है, तो अभी भी कहीं कहीं पर रोड्स ड्राई नहीं है ऑब्वियसली, एंड तो यू हैव टू बी केयरफुल ऑन द रोड दोस्तों। और घर पर है और शायद किचन में बिजी है, या फिर ऐसे ही बैठे हुए हैं, चाय या कॉफी का मजा ले रहे हैं, वेदर भी कोल्ड है, तो एंजॉय कर रहे हैं आज मॉर्निंग। बाहर निकलिए, जरा देखिए क्या मौसम है, और जरूरी है कि पॉजिटिव वाइब्स लाने के लिए यू हैव टू ओपन ऑल द विंडोज एंड स्टफ, गेट द एयर, फ्रेश एयर कमिंग इन, एंड तब उसमें बैठना एक अलग ही मजा रहता है दोस्तों। और गार्डन में टहल रहे हैं, शायद देख रहे हैं क्या हुआ है बारिश के बाद अपने आपके पेड़ों में पेड़ों को आपके गार्डन्स में, तो yeah, it's time to check all those। एंड वैसे एक I came across this powerful line, वो कहती है यथा दृष्टि तथा सृष्टि, so it means the way you think becomes the life you live, तो it was very beautiful, thought to share that, and चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सुबह का सफर में, और enjoy करते हैं ये गीत।

0: this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
10: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bin Coin. Save, spend or donate your bin coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
11: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
12: वेलकम बैक दोस्तों, और सुबह के सफर में आगे बढ़ते हैं. इट्स 7:33 और आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, तो विश करना चाहेंगे वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आपको, बेस्ट विशेस. और एनिवर्सरीज सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस डे. और हैव अ ब्यूटिफुल वन दोस्तों. और दोस्तों, कोई भी ओकेजन होता है, अगर आप आज वो दिन पड़ता है जहां पर आपकी सारी जो अच्छी अच्छी यादें हैं वो आती है, इसके लिए ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से. चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सुबह का सफर में.

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म दिल तो पागल है से। और चलिए आगे बढ़ते हैं सुबह के सफर में। मैं सोच रही थी कि हम अपने बच्चों को हमेशा ये बताते रहते हैं कि यू नो हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ एंड इफ यू डू गुड गुड थिंग्स विल कम टू यू एंड द वर्ल्ड इज अ फेयर प्लेस। एंड ये अन इंटेंशनली या फिर इंटेंशनली ही इट इम्पैक्ट्स देयर बिहेवियर स्पेशली इन अ क्राइसिस सिचुएशन। तो क्या होता है, बिकॉज जब ये बिलीव वो करते हैं बच्चे, और बच्चों को जो आप सिखाते हो वो समझते हैं और उसी पर यू नो दे ट्राई टू फॉलो व्हाट यू टेल देम एंड दे आर काइंड टू एवरीवन, दे वर्क हार्ड, दे स्टडी हार्ड, दे फॉलो द रूल्स यू नो, एंड अंटिल वन डे थिंग्स सीम अनफेयर बिकॉज समवन एल्स गॉट द अवार्ड, और शायद उसका जो बेस्ट फ्रेंड है फाइंड्स अनदर फ्रेंड एंड ही इज नो लॉन्गर द टीचर्स फेवरेट चाइल्ड। तो बच्चे क्या सोचने लगते हैं कि व्हाई मी गॉड, यू नो समटाइम्स जब बच्चों को पिक करने जाते हो आप वो टीरी रहते हैं कि मेरा फ्रेंड दूसरे उसने दूसरा फ्रेंड बना लिया, यू नो सो दे वे ऑल अलोन थ्रू आउट द डे एंड यू गेट अपसेट एज वेल एंड यू नो ऐसी बातें होती है। एंड कहते हैं आई वर्क हार्ड, आई फॉलो द रूल्स एंड स्टिल समवन एल्स गॉट अ हेयर एंड ऐसी यू नो देयर इज अ लिटिल कॉम्पिटिशन हैपनिंग यू नो बच्चों में ऐसा होता है। एंड जब रोते हैं देन आप सोचते हो कि थोड़ा टेंट्रम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। द ये एक ट्रूथ है जो हम हार्ड इसको एक्सेप्ट करना हार्ड होता है। एंड व्हेन किड्स एक्सपेक्ट फेयरनेस इन एवरीथिंग दे स्ट्रगल विद डिसअपॉइंटमेंट एज एडल्ट्स, एंड समटाइम्स शायद हमने भी अगर यही थॉट लेकर चले होते शायद ये कभी कभी जो हम डिसअपॉइंटमेंट फेस करते हैं शायद वही थॉट के साथ हम चले हुए हैं। इसीलिए जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है वी लूज होप क्विकली, वी गेट डिसअपॉइंटेड। एंड क्या होता है, एज एडल्ट्स ये हम जाहिर करते हैं, ये बिहेवियर जो हमारा होता है ये आगे आता है, ऊपर आता है। वी स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स अगर हमारा कुछ सही नहीं होता है, वी दूसरों को ब्लेम करते हैं, वी फील लाइक अ विक्टिम ऐसा, और विक्टिम प्ले भी करते हैं बड़े अच्छी तरह से। एंड वी गिव अप टू सून, और कोशिश नहीं करना चाहते हैं। एंड वाई, बिकॉज हमने बच्चों को सिखाया है रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस, यू नो एक्सपेक्टेशंस जो हमारे यहाँ हमने गलत सिखाया है। एंड आई नो इट्स अ बिट, आप सोच रहे हो कि बड़ा लेट हो गया ये बात सुनने में, एंड शायद आपने सुना भी होगा और मैं रिपीट कर रही हूँ शायद। एंड लेकिन ये हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमेशा वी नीड टू वर्क हार्ड एट ऑल टाइम्स, बिकॉज ये हमारा एक ओनली नेसेसरी ड्यूटी होता है, यू नो। And treating happiness or distress equally, loss and gain, victory and defeat alike, ये हमें बच्चों को सिखाना है। थोड़ी ही थोड़ी सही, लेकिन सिखाना है कि ये नहीं कि हमेशा फेयरनेस होता है, गुड थिंग्स होते हैं हमारा, यू नो अगर अच्छे से पढ़ोगे तो पास हो गए ऐसा, यू नो एंड देन हमारा एक्सपेक्टेशंस बड़ा हाई हो जाता है एज अ अडल्ट। जब हमारे सामने और भी लोग आते हैं जो और भी आइडियाज लेकर आते हैं अच्छे अच्छे, एंड देन वी गेट बिहाइंड, देन वी गेट डिसअपॉइंटेड, वी लूज होप, वी या। तो हमें ये बताना है कि नो मैटर व्हाट, हमारा जो ड्यूटी है, हमारा जो काम है, हमें करते जाना है, बड़ी शिद्दत से करते जाना है। एंड हैप्पीनेस को डिस्ट्रेस को इक्वली लेना है, विक्ट्री भी डिफीट भी उसको भी अलाइक ट्रीट करना है, यू नो। एंड यू हैव टू स्टॉप एक्सपेक्टिंग अ फेयर एंड जस्ट आउटकम इन एवरीथिंग यू डू। कोई भी करना, कुछ करना है, अगर अपॉइंटमेंट पे गए हो अब किसी नौकरी के लिए, आपको नहीं मिला, डजंट मैटर, यू ट्राई अगेन, ये सिखाना है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब हम हमेशा फेयरनेस सिखाते हैं तो एज अ अडल्ट जब अनफेयरनेस हमारे साथ होता है तो फिर हम उसको ले नहीं पाते हैं, तो वो नहीं सिखाना है। वी जस्ट हैव टू पुट आवर हेड डाउन एंड डू आवर ड्यूटी, आवर वर्क। तो ये दोस्तों
आई होप इट हेल्प्स. मुझे तो बहुत हेल्प किया ये, एंड आई वॉज थिंकिंग इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग कि यू नो टू थिंक लाइक दैट एंड नेवर एक्सपेक्ट ऑल द रोजेज ऑल द टाइम. याद रखे कि रोजेज में थॉर्न्स भी होते हैं, तो उसको भी एक्सपेक्ट कीजिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं.

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: यार, साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
6: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
7: वेलकम बैक दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। एक ट्रैफिक अपडेट आया है केल्विन ग्रोव रोड रेड हिल, यहाँ पर स्टेशनरी व्हीकल हजार्ड है, राइट लेन इज ब्लॉक्ड साउथ बाउंड टुवर्ड्स ब्रिस्बेन सिटी। चलिए एंजॉय करते हैं ये गीत।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

कि वी आर फ्राइटन्ड टु बी सिम्पल एन्ड वी वान्ट थिङ्स टु बी कम्प्लिकेटेड अल द टाइम. द मोर थिङ्स आर कम्प्लिकेटेड द मोर वी थिङ्क वी आर इन्टेलेक्चुअल. दिस इज सो ट्रू. अगर आप फॉलो करना चाहते हैं जिदू कृष्णमूर्ति, आप I'm sure, yeah, he was a spiritual writer, and he was an Indian spiritual figure and a speaker and a writer, and he passed away in 1986. So yeah, inki baatein badi kamal ki hai, to aap check kar sakte hain ki, you know, inke bare mein. Chaliye dosto, aage badhte hain.

तो बहुत ही खूबसूरत संगीत आप सुन रहे थे, द डॉन से ये मूवी लिया हमने और कुमार सानू की आवाज में। और आगे बढ़ते हैं। वैसे कहते हैं फिसल कर वक्त के फर्श पर उम्र ढल जाती है, फिसल कर वक्त के फर्श पर उम्र ढल जाती है, कई बार बिना जिए भी जिंदगी गुजर जाती है। जिंदगी जीने का नाम है, हम ऐसे ही गुजार देते हैं बिना जिए ही। अब कहोगे आप कि कैसे जीते हैं जिंदगी, ये मुझे पता नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ पढ़कर हम आपसे शेयर करते थे आई नो, लेकिन आई थिंक कि अगर जिंदगी जीना है, मेरे हिसाब से दैट्स माय थॉट, कि अगर जिंदगी जीना चाहते हैं आप, गुजारे की बात नहीं कर रहे हैं, कि अगर जिंदगी जीना चाहते हैं तो जिंदगी में थोड़ा बचपना होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी अ किड एट टाइम्स एंड टू एन्जॉय दिस लाइफ, अपनी ज़िंदगी को अगर आप जीना चाहते हैं। हमेशा सीरियस रहना इज़ नॉट बेनिफिशियल टू लिव दिस ज़िंदगी। एनीवे, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।

0: cansada.
1: The Sobodi Kusrosa Yegit. Actually, Yegit, I've always wanted to play. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. और हमारे पास एक हेयर रेमेडी है जो ग्रोथ, हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है. सो ऐसा कुछ जाता है, यहाँ पर आप लेंगे कोकोनट ऑयल और जिंजर जूस और एलोवेरा जेल. अगर एलोवेरा जेल है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं. ये कोकोनट ऑयल और जिंजर जूस के को लेकर है. तो जिंजर क्या करता है, प्रमोट करता है हेल्थियर फॉलिकल्स और ये इरिटेशन सूद करता है, फाइट करता है डेंड्रफ और हेल्थियर रूट्स के लिए. तो आप कोकोनट ऑयल 4 टीस्पून ले, इसमें जिंजर को ग्रेट करके उसका जो जूस है वो अच्छे तरह से निचोड़ लें. एंड देन यू मिक्स इट एंड यू कैन वॉर्म इट एंड देन अप्लाई टू योर स्कैल्प. और एक दो घंटे यू नो इसे रहने दे एंड देन यू कैन वॉश इट आफ्टर. एंड ये दोस्तों हेयर ग्रोथ के लिए है ये जो ऑयल जो रेमेडी है आपको अभी हमने दिया. तो इसको आप एक दफ़ा में आप सोचेंगे कि अच्छा लगाते हैं और चलिए देखते हैं कि कुछ होता है कि नहीं, तो ऐसा नहीं होगा. आप इसको हफ्ते में एटलीस्ट ट्वाइस आपको करना होगा एंड यू नीड टू लुक आफ्टर योर हेयर ऑफ कोर्स. एंड ये और कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि इफ़ यू कीप ऑन एक ही शैम्पू काफ़ी दिनों तक आप यूज़ करते हो, देन इंस्टेड ऑफ गुड इफेक्ट्स वो आपके हेयर को फॉल कराता है और थिना भी कर देता है. तो ये भी नोटिस कीजिएगा, हमेशा अपने जो शैम्पूज है उसको आप अभी नहीं कहते हैं कि ये हफ्ते ये लगाओ दूसरे हफ्ते दूसरा लगाओ, ऐसा नहीं है. जो बॉटल अगर फिनिश होता है देन सर्च फॉर अ न्यू बेटर वन. एंड अब शैम्पूज आर वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन जो देखें आप देखें कि आपके बालों के लिए क्या वर्क करता है एंड देन यू कैन गो अकॉर्डिंगली. लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि एक शैम्पू अगर जिंदगी से आप यूज करते आ रहे हो और आपके बाल झड़ रहे हैं, देन इट कुड बी वन ऑफ द कॉजेज कि आप एक ही शैम्पू यूज कर रहे हैं, उसको आपको बदलना चाहिए. एंड देन ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट केयरिंग ऑफ योर हेयर एज वेल. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं.

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत से गीत आप सुन रहे थे और हमारे पास एक वास्तु टिप है आपके लिए। कहते हैं कि जो 5 कार्डमन है इलायची, ये आप अपने पर्स में रखेंगे अगर तो रिमूव करता है ब्लॉकेज ऑफ मनी। तो मैंने सर्च अप किया कि स्पिरिचुअल प्रॉपर्टीज क्या है कार्डमम का। तो कहते हैं कि ये इज अ पोटेंट स्पिरिचुअल एंड एनर्जेटिक स्पाइस नोन फॉर क्लियरिंग मेंटल फॉग और शार्पनिंग इंट्यूशन। और आयुर्वेदा में क्लियर स्टेग्नेशन कहते हैं कि इन आयुर्वेदा इट इज कंसीडर्ड अ सात्विक पीवा स्पाइस that moves the prana through the body, removing mental clutter and easing overthinking. Or it's also a third eye awakening stimulating sweet aroma is used in aromatherapy and meditation to sharpen focus, quiet the nervous system and open the third eye chakra. So, bahut hi khoobsurat sa ye jo spice hai. And the thing about our spices, the Indian, actually I won't say Indian, sabhi log use karte hain isko. Lekin jo ye spices hai, I think Middle Eastern se yahan aaya tha, I think, I'm not sure, but I'll get back on that. Lekin jo ye spices hote hain, inko, they're very sacred actually. And aise hi nahi, you know, हम एक जो स्पाइस उसको लेते हैं अपने हाथों में एंड इट हैज सो मच मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज इसके होते हैं एंड नेवर टेक इट लाइटली एंड यू नो सभी चीज से जुड़े होते हैं। सो कोई भी स्पाइस नाउ आई आपने शायद देखा होगा वो मूवी मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइस, आपने अगर देखा है ऐश्वर्या राय उस मूवी में है एंड हाउ दे प्रे टू द स्पाइसेस एंड ऐसा होता होगा आई डोंट नो, बट मैं ये कह रही हूँ कि जो हमारे स्पाइसेस हैं इनकी बहुत सारे स्पिरिचुअल मीनिंग्स भी है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो वास्तु में कहा जाता है कि अगर आप 5 रखेंगे इलायची अपने पर्स में तो ये जो मनी जो ब्लॉकेज होते हैं वो रिमूव होता है। एंड अगर आप रखते भी हो कोई चीज, आई थिंक लास्ट टाइम जब मैं रेडियो पर थी तो मैंने डिस्कस किया था, वी टॉकिंग अबाउट कि अगर किसी चीज को मानते हो तो उस पर बिलीव करना भी पड़ता है। सो यू नीड टू ट्रस्ट एंड हैव फेथ इन इट एज वेल। तो अगर रखते हो ऐसे ही नहीं रखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं एंड माइंडफुली उस पर वर्क करते हैं, सो आई थिंक दैट वर्क्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिल्म रन से ये गीत को हमने लिया है अभिषेक बच्चन और भूमि चावला।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: दोस्तों, अब तो जाने का वक्त हो गया है और आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले हफ्ते, टिल देन नमस्कार।
4: Turn up the volume.

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701, 3279-1701।

इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर।

0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत से रंग बिखेरे।
2: और अभी से लेकर 10 बजे तक रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। आज का दिन शुक्रवार का दिन आप सबके लिए शुभ हो, और आज जुमा है और आप सब सुनने वालों को जुमा मुबारक। आप सबको हमारा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाह व बरकातहू। और शुरुआत कर रहे हैं हमारा रेगुलर सेगमेंट आज जुमा है।
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

0: खादिम को गुलाम को बुलाया, आवाज लगाई आओ वो आए। फरमा हम वापस अगर अपने घर चले जाए तो यहाँ से कितने पैसे लगते हैं? फरमा 20 दिरहम या 20 दिनार। फरमा 20 दिरहम निकाल लो, वापस जाने का खर्च है, बाकी पूरी पैसों की थैली जो हज के लिए हम ले जा रहे हैं इस बच्ची के हवाले कर दिया आपने, कहा बेटी इसको कबूल कर लो और जाओ खुशी खुशी अपने घर पे और अपने भाई बहनों के लिए खाना तैयार करो, अभी चिड़िया फेंक दो। लड़की की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, उसने चिड़िया फेंक दी और पैसों की थैली देकर घर में चली गई। एक रिवायत के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह उस घर में गए, दरवाजा बंद हो गया था, दरवाजे के पास खड़े हुए, देखे अंदर क्या होता है। लड़की ने जाकर के अपने बहन भाइयों को कहा खुश हो जाओ, अल्लाह ने बड़ी मदद फरमाई, एक अल्लाह वाला आया और उसने ये पैसों की थैली दी है, अब हमें फक्र फाका और मोहताजी की कोई फिक्र नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो उसके लिए जिसने पैसों की थैली दी है। बड़े खुश हो गए, अपने गुलाम से कहा चलो हमारा हज हो गया, अपने अपने घर चलो। घर वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद हुज्जाजी किराम हाजी हजरात हाजी साहिबान हज करके वापस आए तो उनके शहर के लोग भी हज के लिए गए थे, उनको मालूम हुआ तो इनके इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर आए कि हाजियों से मुलाकात कर ले, इनको मुबारकबादी देने लगे। तो वो लोग कहने लगे हजरत आपको भी मुबारक हो हज। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाए मैंने हज नहीं किया। वो कहने लगे हजरत हमने आपको अरफात के मैदान में देखा लेकिन मुलाकात न हो सकी, फला फला जगह पर आपको देखा मुलाकात न हो सकी, आप तो हज में थे। उन्होंने कहा मैंने हज नहीं किया। बहरहाल रात को हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह सोए थे, आसमान से निदा और आवाज आई ए अब्दुल्लाह बेशक तूने हज नहीं किया लेकिन उस मासूम गरीब लड़की की और बच्चों की तूने मदद की और अपने अपने पैसे दे करके उनको खुश किया, मुझे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं तो मुझे इससे इतनी बड़ी खुशी हुई कि तूने हज को मुलतवी कर दिया, नहीं गए मैंने फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया कि जो तुम्हारी शक्ल सूरत लेकर के हज कर ले और तुम्हारी तुम्हारे बदले के अंदर वो हज के अरकान पूरे कर दे। कितनी बड़ी सआदत थी अल्लाह तबारक व तआला की, यहां हज नहीं करने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने इस नेक अमल को इतना पसंद किया, एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जो आपकी की शक्ल सूरत में कहीं अरफात के मैदान में तो कहीं मुज़दलिफा में तो कहीं मीना में वो फरिश्ता आप ही की शक्ल सूरत के साथ हज के अरकान अदा करता रहा। बारगाह इलाही में इनकी ये नेकी इतनी कबूल हो गई, रब्बे करीम इनसे खुश हो गए कि मेरे बंदा अब्दुल्लाह ने आज वो नेक काम किया, आज वो बरकत वाला काम कर लिया जिसको करके अपने रब की खुशी हासिल कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने ये तकवा वाली जिंदगी नसीब फरमाई थी, आखिरत का यकीन था कि मैं ये नेकी करूंगा, मैं अल्लाह को खुश करूंगा और इन मासूम बच्चियों की ये दुआएं लूंगा तो अल्लाह तबारक व तआला हज की सआदत भी नसीब करेगा और उसकी रजा भी मिल जाएगी। बस यही वो लोग है कि जिन्होंने दुनिया में रहकर अल्लाह तबारक व तआला की रजा हासिल की, कल कयामत में इनके मर्तबे उनके दर्जे को कौन बता सकता है। यही वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया की हकीकत को समझा और दुनिया की में रह करके अल्लाह तबारक व तआला की रजा वाले काम कर दिए। हमारा भी फर्ज है, हमारे लिए भी लाजिम है, हमारे हमारे ईमान का तकाजा है, उसकी पुकार है कि हर मर्द हर औरत हर बंदा हर बंदी दुनिया की जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारे, उसकी रजा हासिल करने की कोशिश करे। دنیا سے چھوٹنی ہے, چھوڑنا ہے, جانا یہ ہے. جس جگہ پہ جانا ہے وہاں کی تیاری اس دنیا میں کرنی ہے. ہمیں اپنی زندگی کا رخ بدلنا ہوگا, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار کر کے اس دنیا کی زندگی کی چھوڑنا ہوگا. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں بول کے سپڑ جائے گی. ہمیں بھی جانا ہے, جاگنا ہو جاگ لے, افلاک کے سایہ تلے پھر حشر تک سوتا رہے گا, خاک کے سایہ تلے پھر عبادت اس کی جس نے بخشی تو کی زندگی. زندگی یہ خواب ہے اور موت اس کی ایک تعبیر ہے, موت کے بعد حقیقت کھل جائے گی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر مجھے بھی آپ تمام کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے. عمل ہی اصل چیز ہے, ایمان کے بعد عمل, ایمان عمل کو پکارتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان عمل کو پکارتا ہے, اگر عمل آ گیا تو ایمان ٹھہر جاتا ہے اور اگر عمل نہیں آیا تو آہستہ آہستہ ایمان رخصت ہو جاتا ہے اور آدمی بے ایمانی کی زندگی گزار دیتا ہے. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما دے. سننے والے بھائیوں اور بہنوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی دولت سے نواز دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: آپ سن رہے تھے آج جمعہ ہے پروگرام میں محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان. اس اسٹیشن پر آج جمعہ ہے پروگرام آپ سن سکتے ہیں ہر شکوار کو جمعہ کے دن 9 سے لے کر قریباً 9:30 بجے.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

हसीनों को भी रोते हुए हमने, और फूल पे शबनम के नजर आते हैं कतरे, क्या सुरमा भरी आंखों से।

0: यह है रेडियो 79 ब्रिजोन, आपके साथ फिरोज खान। हर जुमे के दिन फ्राइडेज को आपके लिए पेश करते हैं ओल्ड विंटेज रिलीजियस कवालीज। जी हाँ, हमारे पर्सनल प्लेलिस्ट से निकाली हुई कुछ चुने हुए मजहबी कवालियां हर फ्राइडेज को। तो फिर जारी रखते हैं आज सुबह के रिलीजियस मजहबी कवालियां, हमारे पर्सनल प्लेलिस्ट से निकाली हुई चोजन विंटेज कवालीज।
1: दरबारे तिश्ती

रेडियो 71 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। अभी आप सुन रहे हैं हमारे पर्सनल प्लेलिस्ट से निकाली हुई चुने हुए ओल्ड विंटेज मजहबी कवालियां। आपको याद रहे जिसको हम पेश करते हैं हर शुक्रवार को जुमे के दिन

आप सुन रहे थे हमारे पर्सनल प्लेलिस्ट से निकाली हुई कुछ चुने हुए मजहबी कवालियां, ओल्ड विंटेज मजहबी कवालियां, हर शुक्रवार को जुमे के दिन।

0: बड़ी मुश्किल से जब वो गांव के नजदीक आ पहुंचा, मिला एक शख्स जिसने डगमगाते उसको जब देखा, मुरीद गौस को देकर सहारा अपने घर लाया, सुना सब हाल
1: म्यूजिक पेशकश।
0: कहा कुछ दुनिया ठहरो, जरा आराम फरमाओ, तबीयत जब संभल जाए तो तुम बगदाद को जाओ। वो शख्स और उसकी औरत 3 दिन करते रहे खिदमत।

0: किया रुखसत उसे तो फिर मियां बीवी ने ये सोचा हमें उसने दिया यूं ही दिलासा गाय आने का। मगर जब दिन ढला खुद गाय दरवाजे पे आ पहुंची हुए हैरान वो जो बात अनहोनी।
1: म्यूजिक ट्रैक की फखरिया पेशकश।
0: ये रुतबा ये एजाज जब देगा उन्होंने सोचा वो से पाका क्या मर्तबा होगा। उन्होंने

अपना बच्चा साथ में लेकर चले बगदाद की जानिब। शहे बगदाद के दर पर सफर करते थे, दिन को रात को आराम करते थे। खुदा की शान एक दिन बेखबर वो दोनों सोए थे, वहाँ एक भेड़िया आया और बच्चे पर किया हमला। हुई तकलीफ।

मगर वो भेड़िया बच्चे को लेकर एक तरफ भागा था। औलाद का अब ढूंढना बच्चे को मुश्किल था। कयामत का तसदमा रात काटी आहोजारी में हुई जब सुबह को देखा उन्होंने एक झाड़ी में। बड़ी है हड्डियां बच्चे की अब दिल पर न था काबू। तड़प कर चीख मारी आंखों से बहने लगे आंसू। बड़ी मुश्किल से सब

उन्होंने सोचा इस जा तीन दिन हम लोग ठहरेंगे, जनाबे गौस को फिर अपना गम जाकर सुनाएंगे। पूरी जब रात उनको नींद सी आई तो वो लेके तो देखा ख्वाब में नूरानी सूरत एक बुजुर्ग आए, बढ़ाया हाथ तुरबत शक हुई उनके इशारे से, खुली बच्चे की आंखें यक बा एक

लोग बदनाम कर देंगे तुमको, प्यार को चाहे जितना।